FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आज सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के

0: कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रार्थना हृदय का उफान है, ये स्वर्ग की ओर एक सरल दृष्टि है और ये पहचान है, प्रेम की पुकार है जिसे हम ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं।

वहाँ भय कैसा। जहाँ भय रहित अभयता है, वो घर, वो स्थान परम स्थान है। प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परम पिता भी मनुष्य की तरफ खींचे चले आते हैं। प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रमाण है, क्योंकि परमात्मा का नाम शुभ नाम है।

जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये दो ही लोग जानते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा, दोनों ही हमारे भीतर हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में बेहतर है, अद्भुत है। एक मन ही है जहां परमात्मा का वास है, जिसे हम मंदिर कह सकते हैं।

मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। अगर आपको अपने शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें, राम भजन करें।

जिस तरह नदी की धारा सागर की तरफ बहती है, उसी तरह अपना ध्यान भगवान की भक्ति की तरफ लगाएं, आपका निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि ईश्वर की लीला बड़ी ही अनोखी है। श्रोताओं, जीवन में छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए अपने अहंकार को गलाना पड़ता है। कभी कभी ये मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन गुरु के सानिध्य से ये सब आसान हो जाता है। आज भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में आपने सुना लता मंगेशकर, तुलसी कुमार, अनुराधा पौडवाल के स्वरों को, और इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर थे ए हरिहरन, उत्तरा केलकर और मिताली सिंह की। आकाशवाणी कोटा के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब आबो हवा में सुनिए वार्ता। विषय है वन महोत्सव। वार्ताकार हैं डॉक्टर एल के दादीज।
1: जुलाई हमें जुलाई 1950 की याद दिला रहा है, जब हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने 1950 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की और उस कार्यक्रम का नाम बना वन महोत्सव। भारत में प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला यह एक ऐसा उत्सव है जो न केवल पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को बताता है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन है जो हम सबके जीवन से जुड़ता है। वन महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना व सफलता इस बात की गारंटी है कि हम वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगा सकते हैं। प्रत्येक नागरिक से ये अपेक्षा उस सप्ताह में की गई है कि वह वन महोत्सव सप्ताह में आवश्यक रूप से एक पौधा न केवल लगाए बल्कि उसे पनपाए, क्योंकि ये साधारण सी बात लगती है कि हम एक पौधे को लगा लें लेकिन उसको यदि पनपा नहीं सकते, उसे यदि वृक्ष नहीं बना सकते, तो निश्चित रूप से वन महोत्सव का आनंद फीका पड़ जाता है। वन महोत्सव लोगों में पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता फैलाने में बहुत सहायक होता है। वन महोत्सव लोगों द्वारा घरों, ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेज आदि में पौधों का पौधरोपण कर मनाए जाने वाला एक अभूतपूर्व आंदोलन बनता है, जब अलग अलग स्तर पर जागरूक लोग विशेष प्रकार के अभियानों के साथ पौधरोपण करते हैं। अब की बार जुलाई के इस सप्ताह में जब हम वृक्षारोपण के बारे में बात कर रहे हैं, वन महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमें याद ये भी आता है कि किस प्रकार से नगरीकरण के

0: प्रभाव हम भोग रहे हैं। जैसे जैसे हम नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम हजारों हजार पेड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में यदि किसी के पास में ये ताकत है कि जो सूरज की रोशनी में खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेकर और बदले में जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकती है, तो वो एक पेड़ नहीं, उसकी शाखा नहीं, उसकी टहनी नहीं, बल्कि उसकी एक एक पत्ती है। इसलिए जब हम पेड़ के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पत्तियों के महत्व को इस रूप में जान लें कि पत्तियां ही सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर हमें प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं। जैसे जैसे नगरीकरण का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर इस रूप में आया कि हम पेड़ों से दूर हुए तो हम पत्तियों से भी दूर हो गए, तो हम ऑक्सीजन से भी दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए इस बात को भी महत्वपूर्ण तरीके से समझ लेना जरूरी है कि नगर हमारी आवश्यकता है तो पानी, मिट्टी और हवा भी हमारी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति यदि कहीं और किसी रूप में होती है तो वो पेड़ों और वन महोत्सव से जुड़े हुए इस अभियान और आंदोलन के साथ पूरी होती है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे राजस्थान की अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपने सिर का बलिदान किया और अब हम ये कहते हैं कि सिर सांटे रूंख तो भी सस्तो जान। यदि एक व्यक्ति मर जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन यदि एक पेड़ मरता है तो वह न जाने कितने लोगों को मार डालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हम सब चल पाएंगे। ये बात भी वन महोत्सव के माध्यम से नगरीकरण के दुष्प्रभाव के रूप में हमारे पास पहुंचती है। वन महोत्सव के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां एक और पेड़ पौधों के कार्यक्रमों के साथ जुड़कर हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पालों को सह सकने की स्थिति बनाते हैं, वहीं पेड़ फूलों, पत्तों और फलों का भार वहन करके हम सबको एक ऐसी चीज उपलब्ध कराते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अच्छी तरह से जानें और समझें कि पौधों को लगाएंगे, बढ़ाएंगे और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालें।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे आबो हवा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी ही देर में 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से गीत। फिल्म का नाम होगा

8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर होगा काव्यांजलि कार्यक्रम काव्य पाठ, जिसमें आप सुनेंगे सोनू सुरीला से काव्य पाठ। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। नौ बजे होंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नौ बजकर 10 मिनट पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

सुबह 9:30 मिनट पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी वार्ता, विषय होगा सघन वृक्षारोपण जीवन रक्षण। वार्ताकार होंगी श्रीमती मधुबाला शर्मा। जानकारी होगी विश्व जूनोसिस दिवस पर, साथ ही चर्चा होगी जिसका विषय होगा फिटनेस और करियर उम्र नहीं देखती विषय पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर 12 बजे। शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा श्रोता संवाद करेंगे, विषय होगा जो खेलता है वह खिलता है। परिवेश हवारा में जानेंगे, जानकारी होगी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में। नॉलेज कॉर्नर आप जानेंगे और होगी करंट अफेयर्स व रोजगार सूचना गीत संगीत के साथ। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। शाम 6:05 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा वर्षा की स्थिति और फसलों का चुनाव। जानकारी देंगे डॉक्टर रामकिशन मीणा। साथ ही चर्चा होगी विश्व पशु जन रोग दिवस पर। शाम 7:30 पर का समय रहेगा लोक संगीत का और 8 बजे फिल्म संगीत का। रात्रि 9 बजे फिल्म संगीत और वह 11 बजे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सभा की समाप्ति तक। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण, उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: आरम्भः। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्दः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे का समय है, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरण संग हवाओं का बसेरा। इस खुले आसमां में देखिए सूरज का चेहरा, देखो कितना सुंदर है इस सुबह का सवेरा। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ करते हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा का आगाज। सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है और एक नई जीवन की ज्योत जलती है जो हमारे जीवन में खूब सारा प्रकाश करती है। उसी तरह आप भी बिना किसी भेदभाव के दूसरों के साथ प्रेम और ज्ञान को बांटें। अपने मन से चिंता और भय को निकालकर सकारात्मक ऊर्जा भरें, क्योंकि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश भरते हैं। तो आपको भी अगर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना है तो आलस्य त्याग कर इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए इस मधुर गीत के साथ। सुनते रहें।

श्रोताओ, इस मधुर गीत में दिया है हम सभी के लिए एक खूबसूरत संदेश कि विपत्ति सभी पर आती है, लेकिन जो व्यक्ति फिर से उठकर तिनका तिनका जोड़कर अपनी कुटिया को संभालता है, वही सच्चा इंसान है, जो आधा पेट भरकर दूसरों के प्यास बुझाने में अपनी सेवा देता है, निस्वार्थ मन से जो दूसरों की सहायता करता है। ईश्वर जो है वो उन्हीं के द्वारा आते हैं। श्रोताओ, सीखना हो तो इस प्रकृति से सीखो, जो निस्वार्थ मन से समय समय पर हमें हर तरह के वातावरण का आनंद दिलाती है। सर्दी में धूप तो गर्मी में शीतलता प्रदान करती है। असल में निस्वार्थ सेवा मन को सुकून देती है, और ये गीत जीवन की सच्चाई, अटूट आशा और ईश्वर की सर्वोपरि शक्ति का संदेश देता है।

एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो किसी को पसंद भी होती है और नापसंद भी। हम सभी की बात करें तो सभी की सोच और विचार अलग अलग होते हैं। किसी को प्रकृति पसंद है तो किसी को प्रकृति से मिले पेड़ पौधे वायु हवा, किसी को फूल पसंद है तो किसी को फूलों की खुशबू, किसी को वन में विचरण करने वाले जीव जंतुओं को देखना पसंद है तो किसी को घर में वफादारी से निभाने वाले पालतू पशु। जिनमें भी किसी को पालतू कुत्ते वफादार कुत्ते पसंद होते हैं तो किसी को चंचल बिल्लियां, किसी को खरगोश पसंद है तो किसी को रंग बिरंगे तोते। ये पालतू पशु हमारे जीवन में वो रंग भर के रखते हैं जिनके अलावा हम कभी किसी और खुशी को पाने की कल्पना नहीं करते, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये सुकून साबित होता है क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव उन्हें अंदर से बहुत अच्छा महसूस करवाता है। उनके साथ समय बिताना भी कई लोगों की पसंद होती है। ये पालतू पशु हमारे घरों में खुशी प्यार और सुकून लेकर के आते हैं। इनसे हमें जिम्मेदारी दया और साथ रहने की एक सीख मिलती है। लेकिन श्रोताओं, जहाँ हम इन्हें पालते हैं पोसते हैं इनका ख्याल रखते हैं इनकी देखभाल करते हैं, वहीं हमारा जो दायित्व है वो इनके प्रति इनका ख्याल रखने के साथ साथ खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यानी कि इनकी देखभाल करना और इनसे अपने आप को सुरक्षित रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम किसी पालतू पशु या फिर पक्षी या किसी भी अन्य प्रजाति के पशुओं को पालते हैं या उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं तो उनकी जो सुरक्षा है वो भी हमारा कर्तव्य है। तो खास बात यह है श्रोताओं कि उनका टीकाकरण उनके स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टीकाकरण के द्वारा बैक्टीरिया वायरस जैसे हमलावरों से लड़ने के लिए ये इन्हें मजबूत बनाता है। उनका टीकाकरण न केवल आपके प्यारे पाल

पालतू पशुओं और उनकी जानलेवा बीमारियों से उनको बचाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। तो श्रोताओं, आपके घर में भी कोई एक ऐसा साथी है जो आपके घर में है, जिसके रहने से आपके घर में मुस्कुराहट है, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा है, तो आप भी उनका ख्याल रखें। साथ ही उनके साथ अगर आप रह रहे हैं तो आप अपना भी ख्याल रखें। फिर देखिए, एक सच्चे साथी के रूप में हमेशा वो आपके साथ और आप उनके साथ सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।

श्रोताओं, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जो महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। सन 1917 में डॉक्टर मुखर्जी ने मैट्रिक पास की, फिर 1921 में बीए की उपाधि प्रदान की। आगे विदेश जाने के बाद वे सन 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। एक विचारक, प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि, ख्याति निरंतर बढ़ती चली गई। डॉक्टर मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। हिंदू महासभा में वे शामिल हुए। उनका मुख्य योगदान अखंड भारत का निर्माण, कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाना और एक देश एक विधान का संकल्प सुनिश्चित करना था। एक महान देशभक्त और संसद शिष्ट के रूप में भारत उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। हम भी उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

वे अपने राजनीतिक सफर में लगभग 40 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले नेता थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर आरा जिले में हुआ था। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं आपको बताएं, संविधान सभा में उन्होंने दलितों के अधिकारों की वकालत की और निर्वाचित निकायों और सरकारी सेवाओं में सकारात्मक कार्रवाई के लिए तर्क दिया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। वे मानते थे कि केवल सरकारी नीतियों से बदलाव नहीं आता, बल्कि राष्ट्र का निर्माण समाज की सोच और पहल से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ऐसे थे बाबू जगजीवन राम। उनकी पुण्यतिथि पर आप आज उन्हें हम नमन करते हैं।

श्रोताओं, आज है 6 जुलाई और आपको बताएं, आज है बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि। बाबू जगजीवन राम को आधुनिक भारत के शिखर पुरुषों में गिना जाता है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के स्थानीय सूचनाएं सूर्योदय और सूर्यास्त की जानकारी के बारे में।

और आपको बताएं, रेलवे ने ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। जयपुर बांद्रा टर्मिनस जयपुर वीकली स्पेशल ट्रेन जयपुर से 16 अगस्त तक एवं बांद्रा टर्मिनस से 17 अगस्त तक, जयपुर से 29 जुलाई तक, बांद्रा टर्मिनस से 30 जुलाई तक ये दो जोड़ी ट्रेनें जो हैं वो संचालित होंगी। वहीं आपको बताएं, मुरादाबाद बरेली रेलखंड में तकनीकी कार्य के चलते लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा और ये ट्रेन 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 व 29 जुलाई लालगढ़ से रवाना होकर परिवर्तित मार्ग मुरादाबाद चंद्रोसी बरेली कैंट होकर चलेगी और रामपुर व बरेली पर ठहराव नहीं करेंगी।

श्रोताओं, आपको बताएं, सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और पुराने प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से एक फैसला लिया है। केंद्र सरकार की नया सफर योजना के तहत पात्र वाहनों को बदल करके नए BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने एक मुश्त कर और मोटर वाहन कर में 50 से 100% तक की छूट की अधिसूचना जारी की है। आइए बातचीत करते हैं मानसून के बारे में। अगले 3 से 4 दिन में जमकर बरसेगा मानसून। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। और आपको बताएं, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास की उड़ीसा तट पर बना सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र अब तीव्र होकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है।

है, यानी कि राज्य के पूर्वी भागों में 5 से 6 दिन मानसून सक्रिय रहने और अच्छी बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में 6 जुलाई से और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

और अगली सूचना विद्यार्थियों के लिए। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के प्रीलिम्स में एआई का इस्तेमाल कर 569 अयोग्य आवेदन खारिज कर दिए। आयोग ने 15 साल के डेटा को एआई से प्रोसेस किया है। खारिज करने के कारणों में एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से ज्यादा आवेदन उम्र सीमा पार होने, साथ ही श्रेणी बदलने और प्रयासों की संख्या पार करना रहा। 24 मई की सीएसई के लिए 8.18 लाख ने आवेदन किया था। तो श्रोताओं, बस स्थानीय सूचनाओं में आज इतना ही और साथ ही कार्यक्रम नमस्कार कोटा में भी आज इतना ही। अब वक्त तो चला है आपसे अनुमति लेने का। इस कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा का, सह सहयोग रहा राजेश महावर का। अब दीजिए आपकी रेडियो साथी निशा को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से गीत। और आज की फिल्म में हमने शामिल किया है आखिरी बाजी फिल्म को, तो लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नशा का प्यार भरा नमस्कार। एक ही फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं और फिल्म का नाम है आखिरी बाजी।

अभी आपने सुना सुरेश वाडकर और अमित कुमार की आवाज में ये गीत। शब्द रचना थी इंदीवर की, संगीत अनु मलिक का। फिल्म का नाम था आखिरी बाजी। श्रोताओं, सन 1989 में आई ये भारतीय द्विभाषी एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्देशन आशिम एस सामंत ने किया। और इसी फिल्म से लीजिए सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार की आवाज में। शब्द रचना इंदीवर की और संगीत अनु मलिक का।

आवाजें हैं साधना सरगम और अमित कुमार की। शब्द रचना इंदीवर, संगीत अनु मलिक का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से गीत, और फिल्म का नाम है आखिरी बाजी। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

फिल्म आखिरी बाजी से ये गीत अभी आपने सुना अमित कुमार, सुरेश वाडकर और साधना सरगम की स्वरों में। लीजिए सुनिए अब इसी फिल्म से अंतिम गीत।

फिल्म संगीत एक ही फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं और ये लीजिए सुनिए अंतिम गीत। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम की आवाज में। शब्द रचना इंदीवर की, संगीत अनु मलिक का।

साधना सरगम द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत एक ही फिल्म से गीत आखिरी बाजी के गीत आज आपने सुने और इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान,

0: इमारंग सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायर साइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे

0: संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की

0: की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब काव्यांजलि में सुनिए काव्य पाठ सोनू सुरीला से।
2: आकाशवाणी का सभी श्रोता ने मारो राम राम। मैं कवि सोनू सुरीला आपके बीच मारी कुछ रचना लेकर हाजिर हो रही हूँ। पहली रचना जी को शीर्षक छे महाराणा प्रताप, सुनजो।

तस्वीर आख्या मेरण की तस्वीर, दुश्मन दल की छाती चीर, रण में धूम मचाई रे।

ताप देख पर ताप आपको दुश्मन दल घबरा गयो। हर लड़ो सूरमो बण चेतक भी कर अरी पढ़ा गयो। चाल्या बरछी।

दूसरी कविता आपके बीच जिसको शीर्षक जो बेटी, सास ससुर की सेवा कर जे, सास ससुर की सेवा कर जे, बन जे दुख मढ़ाल, हो बिटिया रानी जा ससुराल, बिटिया रानी जा ससुराल, तुम्हारा आंगन की तुल

लीजे, अरे नीचो माथो कर सुन लीजे, तू अपना की गाल बिटिया, रानी जा ससुराल बिटिया, रानी जा ससुराल, अरे सुख का

करजे, थारा कदमा सू घर करजे, सुख सू माला माल बिटिया रानी जा ससुराल। अर ध्यान लगा जे सासरिया म तू पी हर सू ज्यादा, अरे अहम भाव मत लाज।

कर जो कस्या चुकाऊं। हर रखी बजंटी माँ की गण उन कस्या छुड़ाऊं। रखी बजंटी माँ की गण उन कस्या छुड़ाऊं। मोखो ढूंढ साहूकार मोखो ढूंढ साहूकार बठिया खेता।

ने सारा पकड़ रो रो माथो अर मारा कर माम ही मंडरियो छे क्यों दुख सुना तो मारो कष्टारो संसार मारो कष्टा में परिवार फीका सारा बार त्योहार जीवन हो गयो नरक समान हे भरी बन गयो रे भगवान टप टप आसुड़ा टपकावे राता नींद।

प्रदूषण पर रोक लगावा, स्वच्छ नीर न राखा। हर समझदार बन कूड़ो कर कट कदी न जल म फाका, गंदो जल कर दे।

भर जा गायन का भंडार, भर जा गायन का भंडार, उपजाऊ हो जागी गार, जन जन

सुगम संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नशा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुगम संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान की आवाज में। शब्द रचना शान की, संगीत राम संपत का।

शान की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कैलाश खेर की आवाज में ये गीत।

कैलाश खेर के आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिए फुजन की आवाज में। शब्द रचना है शैलों की और संगीत शफकत अमानत अली का।

आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत कैलाश खेर की आवाज में।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए श्रोताओं, सुगम संगीत में सुनिए अब अंतिम गीत। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं AR रहमान की आवाज में।

0: एआर रहमान द्वारा गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी कल वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्याकार्ता जाएंगे, जहां वे बनन मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने भारत के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और यात्रा के आखिरी चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरूआत तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां वे राजस्थान की सहकारिता मॉडल की सफलता को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है और राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में कल विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश में शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में

0: कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित दो वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत होगा। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही विचार गोष्ठियां और अन्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। अजमेर के पंचशील मल्टीपर्पज स्टेडियम का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने डॉक्टर मुखर्जी के नाम के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्र को मंजूर करते हुए निर्देश जारी किए हैं। 80,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसमें आधुनिक खेल संरचना विकसित की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में मुकंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मुकंदरा टनल निर्माण के दौरान टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले मार्ग पर वन्य जीवों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास के निर्माण में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता के साथ समय पर मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को जल्द पूरा करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर तथा आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरोह के मुख्य सरगना को पुणे से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लोन देने के बहाने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों के दस्तावेज हड़पता था और फिर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। आरोपी अपने नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था और सदस्यों को कमीशन का लालच देकर अन्य लोगों को फंसाता था। शिकायत मिलने पर स्टेट साइबर क्राइम जयपुर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने इस मामले की तह में जाकर आरोपी को पकड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बोर्ड सचिव नीतू यादव ने बताया कि विद्यार्थी 6 अगस्त तक परीक्षा शुल्क के साथ चालान जनरेट कर सकेंगे। शुल्क 11 अगस्त तक निर्धारित बैंकों में जमा करना होगा। अंतिम तारीख के बाद लेट फीस के साथ 1 सितम्बर तक आवेदन का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में मॉनसून दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, वनस्थली, फलौदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 1 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई।
1: जिले में मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। भारी गर्मी और उमस के बीच रविवार को बारां शहर समेत जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। बारां शहर में 23 एमएम, अटरू में 2, शाहबाद में 30 एमएम और किशनगंज में 2 एमएम बारिश दर्ज की गई। जिले के गौघाट, हरनाउदा साजी, पलाइता समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई। जिले के केलवाड़ा और हरनाउदा साजी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम और रविवार को बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। देवरी कस्बे

0: में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जिससे सुबह से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12।
1: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:10 का समय है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शफकत अमानत अली की मधुर आवाज में। शब्द रचना राजशेखर की, संगीत कृष्णा का। फिल्म का नाम तनु वेड्स मनु।

शफकत अमानत अली के मधुर आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

फिल्म जब विमेट से ये गीत आपने सुना, उस्ताद राशिद खान के मधुर स्वर में शब्द रचना थी फैज अनवर की और संगीत संदेश शांडिल्य का। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

राहत अली खान के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी खुमार की, संगीत साजिद वाजिद का। फिल्म का नाम था डॉली की डोली। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब सुनिए अंतिम गीत।

अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं राहत अली खान के स्वर में, शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम नमस्ते लंदन।

राहत फतेह अली खान द्वारा गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 9:30 का समय है। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सब के मन पसंद कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अर्चना, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? स्कूल खुल गए हैं और हमारी कई बहनें सुबह सुबह बहुत व्यस्त हो जाती होंगी बच्चों के टिफिन बनाने के लिए, है ना? वापस से वही दिनचर्या हमारी शुरू हो गई है। इसी के साथ हम बात करते हैं सेहत की। जी हाँ, सेहत यानी कि तंदुरुस्ती, या हम कहें कि अपने आप को निरोगी रखने की कोशिश, ये किसी उम्र की मोहताज नहीं है। आप सभी ने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि आप एक चुस्त मन चुस्त दुरुस्त शरीर के मालिक हैं तो निश्चय ही हर रूप में जीवन के हर सुख का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ हम अपने शरीर को बीमारियों के हवाले कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ यदि हम शरीर को सेहत की और सार संभाल करें तो उम्र के हर पड़ाव पर चुस्त दुरुस्त रहा जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट से किसी भी उम्र में बेहतरीन बॉडी और स्टेमिना पाया जा सकता है। अगर आप 35 से 40 की उम्र के बाद कोई भी वर्कआउट या नया फिटनेस रूटीन शुरू कर रहे हैं तो एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अक्सर लोग जोश में आकर एकदम भारी वर्कआउट शुरू कर देते हैं जिसमें चोट लगने का खतरा रहता है, और हमेशा छोटे कदमों से शुरुआत करें। फिटनेस के साथ बात करते हैं हम करियर की। जी हाँ, जब हम उम्र की बात करते हैं ना तो हमें लगता है कि उम्र जो बढ़ती उम्र है वो कहीं ना कहीं रुकावट दे देती है हमारी सेहत में। और अगर करियर की बात करें तो विशेष तौर से महिलाएं ये मानती हैं कि एक उम्र के बाद करियर की शुरुआत नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी उम्र में अपनी सेहत के लिए बात कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में अपने करियर की बात कर सकते हैं। और आज जब माहौल ऑनलाइन लर्निंग का है तो और भी आसान है। अगर आपको कोई शौक है, हॉबी है, तो आप उसे ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर नया हुनर सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम हैं जिनसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने रुचि के कोर्स को कर सकते हैं और एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्र को आप एक नंबर ही माने, ये ना माने कि अब इस उम्र के बाद कुछ नया सीखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जहां से आप शुरू करेंगे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। कहते ना, हम जहां खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। तो ठीक उसी तरीके से उम्र के जिस पड़ाव पर आप ये सोचेंगे कि अब मुझे इस दिशा में सोचना है, तो वहीं से आपकी दिशा बदल जाएगी और दिशा के साथ दशा भी बदल जाएगी। सखियों, यह है मनोरंजन और जानकारियों का खजाना, आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

सखियों, मनोरंजन और जानकारियों का खजाना आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत सुन रही हैं आप। आइए सुनवाते हैं आपको एक वार्ता। वार्ता का विषय है सघन वृक्षारोपण और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती मधुबाला शर्मा।

नमस्कार। सघन वृक्षारोपण, जीवन संरक्षण। नववधू को जिस तरह उसके माता पिता अनेक स्नेहपूर्ण उपहारों के साथ अपने घर से नए संसार में प्रवेश करने के लिए भेजते हैं, उसी भांति ईश्वर ने भी मनुष्य को अनेकानेक बहुमूल्य एवं अमूल्य सौगातों के साथ इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। वृक्ष एवं हरियाली ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन उपहारों में से एक बहुमूल्य उपहार है, जिसे हरा सोना नाम दिया जाता है। खनिज सोना नहीं हो तो भी जीवन यापन संभव है, परंतु वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वनों एवं जंगलों में विद्यमान वृक्षों से हमें फर्नीचर, मकान एवं अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। ये हमें फल, मसाले एवं अनेक उपयोगी औषधियां प्रदान करते हैं। पशुओं के लिए चारा एवं छाया इन्हीं से मिलती है। वृक्षों द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जिसे सांस द्वारा हम अंदर लेते हैं और जीवित रहते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। कागज, रबर एवं माचिस जैसे उद्योग वृक्षों पर ही निर्भर हैं। भूमि के कटाव को रोकने एवं ठंडी हवा देने का कार्य वृक्षों द्वारा ही किया जाता है। नदियों एवं समुद्र से ऊपर उठे जल वाले बादलों को हमारे ये वृक्ष आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा संभव होती है। कल कल करता नदियों का नीर हमें वृक्षों की ही देन है। उद्योगों एवं कल कारखानों में उपयोग किया जाने वाले जल की प्राप्ति बिना वृक्षों के कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल विद्युत ग्रह तो पूर्णतः जल पर ही निर्भर हैं। अतः हमारी संपूर्ण खुशहाली का श्रेय इन वृक्षों को ही जाता है। सुबह उठते ही हम करते हैं पृथ्वी को प्रणाम और सूर्य को नमस्कार। हमें प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है सूर्य। धरती पर जीवन की संभावना सूर्य द्वारा प्रदत्त इन उपहारों से ही संभव है। लेकिन हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि सूरज से आने वाली किरणों में से कुछ किरणें हमें लाभ पहुंचाने की अपेक्षा हानि पहुंचाती हैं। इन्हें अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणें कहा जाता है। ये किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो सभी प्राणियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। यह तो हम सभी को जानकारी है कि हमारे वायुमंडल में अनेक गैसें हैं और इनके बिना धरती पर जीवन भी असंभव है। सभी गैसों का अपना महत्व है। इनमें से एक गैस है ओजोन। इस गैस का अधिकांश भाग पृथ्वी को लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर घेर कर वायुमंडल की एक परत के रूप में रहता है। वायुमंडल में इसका अंश बहुत कम होने के बावजूद भी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा के लिए यह ओजोन परत अति आवश्यक है। इन किरणों द्वारा हमारे आंखों एवं त्वचा को हानि पहुंचाई जा सकती है। यह ओजोन परत हमारी रक्षक है। वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला कि हमारी ओजोन परत में एक छेद है जो अमेरिका जितना बड़ा है और यह हेली बे अंटार्कटिका के ऊपर है। वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा सिद्ध किया गया है कि उद्योगों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ ओजोन अणुओं को नष्ट करके ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि इसके कारण विश्व में त्वचा और आंखों के रोग बढ़ गए हैं। इस भयानक समस्या से छुटकारा पाने के लिए विश्वव्यापी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमें और आपको भी पराबैंगनी किरणों रूपी शत्रु के आक्रमण से अपनी सुरक्षा सिर्फ ओजोन परत को बचाकर करना है। हमारे पृथ्वी ग्रह की छतरी की भांति रक्षा करने में सक्षम ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।

0: जिसे CFC के नाम से जाना जाता है। यह हमारे फ्रिज, मोबाइल, AC, परफ्यूम, डिओडोरेंट, रूम फ्रेशनर, हेयर स्प्रे, पेंट्स इत्यादि में उपयोग में ली जाती है। इन खतरनाक पदार्थों से बचने के लिए हमें ओजोन मित्र या CFC फ्री सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। आओ हम सब धरती की ओजोन परत के मित्र बन जाएं और सघन वृक्षारोपण करके सभी प्राणियों की आंखों और त्वचा को रोगग्रस्त होने से बचाएं। देश की प्राकृतिक संपदा हमारी समस्त जीव सृष्टि की पवित्र विरासत है। मेरा मत है कि अपने जल संसाधनों, मिट्टी, वायु खनिज संपदा, पशुधन, जैव विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य समझना चाहिए। इन संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण के प्रति हमारी दृष्टि, नीति एवं व्यवहार समग्र जीव सृष्टि के सुदीर्घ एवं पारस्परिक सह अस्तित्व के सिद्धांत पर केंद्रित होनी चाहिए। विश्व के 25% भूभाग व 4% शुद्ध जल संसाधनों पर हम विश्व के 17% लोग अवलंबित हैं। ऐसी स्थिति में पंच महाभूतों में जल जैसी प्रकृति की पवित्र देन की संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। जल हमारी संपूर्ण जीव सृष्टि के जीवन का आधार है, इसलिए देश के जल संसाधनों के उचित प्रबंधन, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की सहज आपूर्ति एवं कृषि की आवश्यकताओं के साथ सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए जल संरक्षण समय की महती मांग है। इस परिदृश्य में मैं सभी देशवासियों का आह्वान करती हूं कि जल जैसे प्रकृति के दिव्य उपहार के दुरुपयोग, अपव्यय एवं सभी प्रदूषणकारी गतिविधियों से दूर रहते हुए जल संरक्षण के लिए हर संभव प्रयत्न करें और इसी क्रम में वृक्षारोपण करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल उपहार का संरक्षण, संवर्धन व श्रेष्ठ प्रबंधन किया जाए। जल की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के पुनर्शोधन, निर्लवीकरण से लेकर नदियों के प्रवाहमान जलराशि का सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के प्रभावी उपाय अत्यंत आवश्यक हैं, जिनमें वृक्षारोपण कर सघन वन तैयार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। देश के जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से गंगा, यमुना सहित सभी नदियों व अन्य जल स्रोतों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने व सरस्वती को पुनः प्रवाहित करने के लिए प्रभावी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। जन जागृति करके पौधारोपण किया जावे और वन संपदा में निरंतर वृद्धि हो तो हमारी ये परिकल्पना साकार हो सकती है। सच ही है, मिले जब स्वच्छ जल और वायु, बढ़ती जाए प्राणी की आयु। आइए दो तरह की कल्पना करें। पहली, बिना वृक्षों एवं वनों वाली सृष्टि और दूसरी, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वृक्षों एवं वनों को अपने वस्त्र एवं आभूषण के रूप में धारण किए हुए पृथ्वी। कौन सी परिकल्पना आपकी पसंद है? यदि वनों एवं वृक्षों की कटाई लोपवश इसी तरह जारी रही तो एक दिन यह पृथ्वी वृक्ष एवं वन विहीन हो जाएगी, जहां जीवन भी संभव नहीं होगा। तो फिर आइए देर मत कीजिए, अधिक से अधिक वृक्ष उगाइए और उनकी सुरक्षा कीजिए। वृक्ष हमें वरदान है, धरती का श्रृंगार है। फलों की महक, भंवरों का गुंजार एवं तितलियों का सौंदर्य कायम रखना है तो हमें अपने इस हरे धन को बचाना ही होगा। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता सघन वृक्षारोपण। वार्ताकार थी श्रीमती मधुबाला शर्मा। सखियों, बहुत सही कहा है कि सावन आए, सावन आए, सावन का हम कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन सावन सावन तभी है जब बारिश हो, आसपास हरियाली हो। अगर हमारे आसपास हरियाली ही नहीं होगी तो हम उसे सावन कैसे कहेंगे? अगर आसमान से बारिश ही नहीं होगी तो हम उसे सावन कैसे कहेंगे? और ये सब तभी मुमकिन है जब हमारे आसपास वृक्ष हों और जब

बारिश का मौसम आ ही गया है, आने ही वाली है बरसातें, तो क्यों ना हम वृक्षारोपण की ओर ध्यान दें। हमारे आसपास कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं, उन्हें सहेजे भी सही, क्योंकि बारिश के मौसम में तो पानी ऊपर से मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद हर मौसम में हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है, ताकि हमारे आसपास वृक्ष हों, सावन हो, फुहारे हों, क्योंकि जब वृक्ष होंगे तभी सावन होगा, फुहारे होंगे, और जब सावन और फुहारे होंगी तभी आप उस मौसम का आनंद ले पाएंगे। सखियों, अब बात करते हैं एक विशेष दिन की। आज है 6 जुलाई और हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे रेबीज, COVID-19, इबोला, स्वाइन फ्लू आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और यह दिन लुई पाश्चर द्वारा 6 जुलाई 1885 को रेबीज के पहले टीके के सफल परीक्षण की याद में मनाया जाता है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो जानवरों से मनुष्यों में वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के माध्यम से फैलती हैं। इसमें पालतू जानवर और जंगली जानवर दोनों प्रकार के जानवर आते हैं। इनसे बचाव के लिए अपने पालतू जानवरों का समय पर टीकाकरण करवाएं। जानवरों को छूने या संपर्क में आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, चाहे वो मांस के रूप में हो या दूध के रूप में हो, अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो उन्हें अच्छे से उबालकर या अच्छे से पकाकर खाएं, क्योंकि अधपका मांस खाने पर ये बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। या अगर दूध को आप अच्छे से पाश्चराइज नहीं करते हैं, उनको अच्छे से उबाल कर नहीं पीते हैं, तो उसके माध्यम से भी जूनोटिक बीमारियां आपको हो सकती हैं। कोई भी दिन मनाने का उद्देश्य होता है उसके प्रति जागरूकता फैलाना। ये जो बीमारियां हैं इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अगर आपके आसपास लोगों को इस विषय पर जानकारी नहीं है तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें सचेत करें कि जानवरों से प्राप्त कोई भी पदार्थ अगर हम खा रहे हैं तो उसको अच्छे से पाश्चराइज करके खाएं, अच्छे से उबाल कर खाएं, अच्छे से पका कर खाएं, वरना उनसे आने वाले वायरस, बैक्टीरिया कई घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। और ये सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जब ये बीमारियां आती हैं तो एक महामारी का रूप भी ले लेती हैं, तो ये पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं कि जानवरों से होने वाली मनुष्य में बीमारियां किस प्रकार से रोकी जा सकती हैं और इनके कारण क्या हो सकते हैं। आप अगर पालतू जानवर रखते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, समय समय पर उनका टीकाकरण अवश्य करवाएं, और साथ ही जब भी आप उनकी देखभाल करते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ करना ना भूलें। देखिए, जानवर हमें बहुत प्यारे होते हैं। हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं, चाहे वो आप कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, तोता पाल रहे हैं, कुछ भी पाल रहे हैं, तो आपको उनसे विशेष प्रेम होता है, आप उसकी विशेष देखभाल करते हैं। और कई बार अपनी दैनिक चर्या में जल्दबाजी के चलते हम उनके हाथ लगाते हैं या उनको कुछ खाना खिलाते हैं और उसके बाद हाथ धोना भूल जाते हैं, तो ये आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। तो आप जीव जंतुओं को पालें, उनको ध्यान दें, लेकिन साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि उनसे किसी भी प्रकार का रोग आपको या आपके परिवारजन को ना हो। सखियों, अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, जहां सुनते हैं हम ये प्यारा सा गीत।

सखियों, ये खूबसूरत गीत था इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। बात कर रहे थे हम वृक्षारोपण की, तो वृक्ष जरूर लगाएं। अगर आपके आसपास बड़े पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो छोटे छोटे पौधे ही लगाएं, क्योंकि हरियाली न सिर्फ आपकी आंखों को सुकून देती है बल्कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से भी आपको राहत देती है। तो अपने आसपास हरियाली जरूर रखें, चाहे छोटे पौधों के रूप में ही रखें। कार्यक्रम कैसा लगा आपको जरूर लिख भेजें हमें पाती। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कोटा, पिन कोड 324001। और जो सखियां हमें ईमेल करना चाहती हैं उनके लिए हमारी ईमेल आईडी है enjoyenjoyairkota@gmail.com। सखियों हंसी हंसाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। फिर होगी मुलाकात इसी वायदे के साथ। अपनी सखी अर्चना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहाँ चलते हैं जहाँ अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहाँ तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट? तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके

0: पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
1: बिल्कुल नहीं, इट वाज अ चैलेंज. जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वाज ओपन फॉर इट. तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था. और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी. और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे. वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था. और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा. और वो उन्होंने बखूबी निभाया था. उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी. लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे. उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं, मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता. तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूं या तृतीयपंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव. फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है, तभी जाके फिल्म अलग बनती है.
0: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है.
1: एग्जैक्टली. वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में. इसलिए ये बहुत जरूरी था. और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है, इसलिए हम इसमें तृतीयपंथी रखते हैं,
0: थर्ड जेंडर
1: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे. हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था. लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
0: यहाँ गाना सुनते हैं.

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से नाचा ची काम कराए तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी

0: जी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में. तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है, अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी रीलें चलती हैं.
0: हाँ.
1: और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं.
0: Correct.
1: जो वहां उन्होंने किए थे. लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है.
0: ओह यस ऑफ कोर्स. हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर.
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर. सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था. हुकूमत

0: ये काफी सारी फिल्में हैं
1: जो एटीज वाला दौर जो
0: हाँ एटीज वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे। और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
1: हाँ।
0: काला नाग राइट, बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल।
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई नेवर फॉरगेट, ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
1: अरे गजब।
0: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे।
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं। हाँ, जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक। हाँ, वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: ओ, मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती, मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
1: सिर्फ सुना है,
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
0: करेक्ट।
1: वहां
0: करेक्ट।
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
0: करेक्ट।
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही और
1: बहुत
0: उस समय
1: डरावना। और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत।

0: की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद, उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी. तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट. सब लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे. और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे. मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे.
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं. वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है.
0: पूरा पूरा दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे. वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है, अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे. तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट. तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा खत्म होगी. और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स. तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल.
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अच्छा. अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी. पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी. पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा. ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो, करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था. पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था जब शूट्स होते थे? घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति

0: से.
1: अच्छा.
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे, उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना. बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है.
1: ओके.
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है. और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी. और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद बाद चलते थे.
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की. कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे. पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे. फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी, इसलिए मैंने ये किया था. पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है. आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो.
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं. बिल्कुल नहीं.
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे.
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे. तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था. तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए. औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है. तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है. लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़ के. 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं. तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था. और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया. खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे. और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था. हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं. पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी. तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए.
1: अरे अरे अरे.
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए. वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते.
1: ओहो.
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ. तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है. हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस

0: तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक

0: से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी
1: फैमिली
0: चल रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन
1: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं, और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो
1: काम किया,
0: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
0: बिल्कुल
1: सारी फिल्में दिखाऊंगी।
0: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
1: बहुत ही अलग,
0: क्या लीग थी वो।
1: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
0: बिल्कुल,
1: पर लेकिन वो इतनी

0: ओवर द टॉप
1: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
0: यस yes.
1: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
0: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
1: प्लीज।

0: भी वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है में जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं।

0: तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी.
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद.
0: बहुत अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, माला माल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था. इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे.
1: राइट.
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को अभी हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है.
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं. Sure. क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये भजन, जिसे लिखा महेंद्र दहलवी ने और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत इसमें आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में जावेद अख्तर का ये कलाम, कुलदीप सिंह का संगीत, फिल्म सात साल।